0: करूँ मार
1: हाथ में किया
0: करूँ मार करूँगी ये पकड़ूँगा मार
2: नवतार
0: पकड़ूँगा मार करूँगी ये पकड़ूँगा मार।